0: सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन है, अपना घर का खर्चा चला पाए, उस पैसे को आप कहीं भी कैसे भी खर्च कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उसके ऊपर, तो आप हमें कॉल करें। प्रॉपर ऑफिस है, 8 साल में हम इतने लोगों को, हजारों लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, बाल सफेद हो गए हैं, कोई भी चलाकी या मीठी बातें नहीं है।
1: अच्छा, इतने लोगों को हेल्प कर चुके, बाल सफेद हो गए आपके?
0: हाँ जी, हाँ जी, 34 ईयर्स की एज में भी सफेद हो गए लगभग 70%।
1: अच्छा, क्या बात है, चलो कोई बात नहीं, सफेद हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हो। सो सरांश, इंटरेस्ट रेट आप क्या बोल रहे थे, कितना इंटरेस्ट रेट है इसका?
0: हाँ जी, शुरू में अगर 2 साल का कोर्स है तो 2 साल तक ब्याज है 0%, 2.5 साल बाद जाके ब्याज है 2.5% पूरे साल का, मतलब $1,00,000 का ब्याज महीने का सिर्फ $200 है। और मतलब अगर आप पैसे नहीं दे पाते गवर्नमेंट को, आपका लोन डेफर हो जाता है। ये नहीं कि आपकी गाड़ी उठा लेंगे, घर उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिल सकता। है लोन, लेकिन ऐसा लोन आपको कहीं नहीं मिल सकता। कॉल करें, अभी कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए।
1: सरांश, कोर्स केड़े केड़े ने थे की ऑनलाइन ने?
0: मोस्ट पॉपुलर है जी बिजनेस का प्रोग्राम, 2 साल का है, फंडिंग आपको 2 बार आती है, डबल फंडिंग आती है, और फुली ऑनलाइन ने सारे कोर्सेज, एग्जाम्स नहीं है, इजी टू पास है, तो मतलब बहुत लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, पीछे ना रहिए, फंडिंग हासिल करें, उस पैसे को इन्वेस्ट करें, ग्रोसरी करें, आपकी इच्छा।
1: वेरी गुड। एंड सरांश, थोड़ी कितनी फीस है?
0: काम होने तो बाद $199 फ्लैट फीस, काम होने के बाद में है, शुरू में तो कुछ है ही नहीं सर, हमें अपने काम पे भरोसा है, और बाद में क्लाइंट्स अपनी ईमानदारी रखते हैं, हमें हमारी फीस इंट्रैक्ट या कैश के रूप में ऑफिस दे जाते हैं। प्रॉपर ऑफिस है 218 एक्सपोर्ट बुलेवर्ड पे, आप आए, हाई क्लास जगह पे ऑफिस है जी, ये नहीं कि आप, लोग हमें कहते हैं सर हमारा पुराना एजेंट हमें टिम हॉर्टन्स पे कोट पैंट पहन के मिला था। हमारा प्रॉपर ऑफिस है, काम होने के बाद छोटी सी फीस लेते हैं, कोई मीठी बातें नहीं है, कोई चलाकी नहीं है, कोई भी इसमें हेरा फेरी नहीं है।
1: वेरी गुड। नंबर है सरांश दा 4372643175 4372645। सरांश, हुण अजकल कैनेडा अमेरिका दे आपस विच जो भी लड़ाई चल रही है, ते इकॉनमी ते बैंक्स भी टाइट हो रही ने, सो इस लोन दा दे उत्ते की असर है उस चीज दा?
0: अभी तक कोई चेंज नहीं है, बट यस, हर 2 साल में गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है एडुकेशन में। तो अगर आप आज एनरोल करते हैं, आपको पूरा फंडिंग आएगा, मतलब अगर हमने आपको 1.5 लाख 2 लाख का असेसमेंट दिया है, आपको उतना ही आएगा। बट यस, अगर आप, अब नेक्स्ट पॉलिसी चेंज गवर्नमेंट का होना है अगस्त 2028 में, तो अगर आप 3-4 महीने बाद आएंगे, तो आपकी जो 4th इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट से आपके खाते में डायरेक्ट आनी है, उसमें शायद थोड़ी सी कम आए ज्यादा आए, राइट, डिपेंडिंग ऑन दैट पॉलिसी जो अगस्त 2028 में आएगी। तो पीछे ना रहिए, जो लोग सेकंड कोर्स चूज करना चाहते हैं हमारे पास आइए, फीस सबसे कम है, ऑनलाइन कोर्सेज है, एग्जाम्स नहीं है, और मतलब कॉलेज की फीस भी सबसे कम है, तो मतलब ज्यादा पैसा हमारी जेब में नहीं, आपकी आपकी आपकी जेब में।
1: नंबर एक क्विक है, सॉरी सरांश, नंबर है सरांश दा 4372643175 4372643175 4374 4372643175। कॉल करो, लोन दी जानकारी लो, 0% ते लोन मिल रहा, 4372643175। सरांश, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू जी टाइम के लिए।
1: वेरी गुड। ओके नवी जी, सारे मैसेज देते, ओके ओके ओके, आ भी देता हूं। फ्रेश फूड सेंटर, वाह भी वाह, फ्रेश फूड सेंटर तक जाओगे ग्रोसरी कर, इन्नी फ्रेश, इन्नी टॉप दी क्वालिटी, कैलडन दा टॉप दा ग्रोसरी स्टोर, 12570 कैनेडी रोड, फ्रेश फूड सेंटर ते तुसी जरूर पहुंचो, फ्रेश फूड सेंटर। एक मैं नाल दी नाल तुहानू फ्रेश एयर डक्ट क्लीनिंग दा भी नंबर दवां, तुसी डक्ट क्लीनिंग हजे भी नहीं कराई, इन्नी डिले ना करया करो यार, हुण नूं तां बड़ा कुछ हो जाणा सीगा। सो फ्रेश एयर डक्ट क्लीनिंग 4376887750। थोड़े डक्ट्स, थोड़े वेंट्स जड़े ने, हुण एसी चलिया पूरी समर, राइट, सो इन्नी डस्ट है वेंट्स डक्ट्स दे विच, जो कैमरा पाके तुहानू दिखाउणगे तुसीं आप कहोगे यार भाई तां बड़ी गलत गल है। सो तुसीं जरूर डक्ट क्लीनिंग कराओ, 4376887750 4376887750 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਕ ਕਲੀਨਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਦੋ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਪਵਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਕ ਬੋਲ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री। अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच। हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा, ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन। हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड, यूनिट 2, ब्रैम्पटन, ओंटारियो। ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छूमंतर हो जावेगी। आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्नैक्स, ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगो शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा। याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cashandcarry2023@gmail.com ते। स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा, इसे लई तुहाडे लई है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स। लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा, बुफे, डाइन इन, टेक आउट, केटरिंग, लंच दे डिनर सारा कुछ है। स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी। ते फिर देर किस गल दी, अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: कार वैन ट्रक दा काम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर। टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी काम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करोनी है, स्पेशलाइज करदे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज्ड डायग्नोस्टिक काम च, स्टील्स एंड मेलनी, रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498-1499-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1498-1 ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਯਾਰ ਟਿਊਨ ਚਲਾ ਤੀ ਗਾਣਾ ਚਲਾਇਆ ਨੀ ਸਵਾਲ।

मेरे काज करे मेरा सतगुरु मैनू चिंतना कोए करने हारा करदा आपे जो होना सो होए। सत श्री अकाल जी, गुड मॉर्निंग। मैं हाँ संतोष कौर ते तुहाडा सारयां दा स्वागत करदी हां तुहाडे ही अपने प्यारे जिहे शो रेडियो आवाज़ ते।

0: Brampton या फिर तीसरी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 Brampton इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड Brampton वदिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900
1: यार इना इंश्योरेंस ने ते तू कढ़ाता वधिया ते जायज रेट कित्थों मिलेगा
2: टॉप फाइनेंशियल इंक तो जो अपनिया बेहतर ते भरोसेमंद सेवावां लई जाने जांदे ने
3: क्रिटिकल मॉर्गेज RESP RRSP विजिटर इंश्योरेंस सुपरवीजा स्पेशल डिसेबिलिटी प्लान फॉर ट्रकर्स जे थोड़े कोल 20 नालों ज्यादा ड्राइवर ने ता थानू अनबीटेबल प्राइस लेके देंगे
2: कॉल करो 20 सालां दे तजुर्बे वाले सुरजीत सिंह पड्डा जी नू 6473300310
3: Yamilo 70 Delta Park Boulevard Unit 11 Brampton
4: A to Z Kitchen Cabinet ਬਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲੱਕੀ ਭਾਜੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਦੇਖੇ ਗੁਆਂਢੀ ਵੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਟ ਵਾਸਤੇ A to Z Kitchen Cabinet 416-720-7073 905-720-7073 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
5: Toronto, get ready. Punjabi Virsa Radio and Television. Realtor Rav Singh, Cellular Points, A to Z Kitchen Cabinet, and Realtor Harp Garewal present the

0: September 18, 7 p.m. at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत देखी उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुझे आशीर्वाद दोगे.
2: मैं आ जा तो मैं हर नचिए नचिए पाँच बाहपा मैं आ जा तो मैं हर नचिए.
0: For tickets visit Ticketmaster. For information call Singh Harjeet at 647-448-1000.
3: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000. Toronto's number one station, AM.

0: भी दोस्त या रिश्तेदार को एज ए स्टूडेंट, विजिटर, पीआर या फिर अपने स्पाउस या पेरेंट्स को कनाडा बुलाना चाहते हो तो याद रखे स्टार इमिग्रेशन।
1: स्टार इमिग्रेशन
0: कॉल 905-457-3131।
1: स्टार इमिग्रेशन।
2: दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं
3: हूं टोरंटो। गेट रेडी पंजाबी विरसा रेडियो एंड टेलीविजन, रियल्टर रव सिंह, सेलुलर पॉइंट्स, ए टू जेड किचन कैबिनेट एंड रियल्टर हार्प गरेवाल प्रेजेंट द सेंसेशनल

0: रात आमें छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडोम ऑटो ते बॉडी सेंटर, जो सर्टिफाइड कोलिजन शॉप है, जो करनगे मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर, एक्सीडेंट होने ते इंश्योरेंस कंपनी नाल डील भी कर देने। स्काईडोम ग्रुप ऑफ कंपनीज पिछले 25 सालों तो तुहाडी सेवा विच।
0: भाई ते कारां दे नाल नाल बसां ते वड्डे ट्रकां दी रिपेयर ते बॉडी वर्क दा भी काम कीता जांदा है। फ्लीट वास्ते स्पेशल पैकेज ने।
1: कॉल करो 905-874-9878।
2: मतलब शायद तुसी स्वीट महल नहीं गए?
3: नहीं मैं मर जा उठे की हूं
2: GTA दा सब तो स्वादला खाना ओथे ता मिलदा है। सही सुनया भाई, जिन्ना सोना रेस्टोरेंट है उस तो भी ज्यादा स्वाद स्वीट महल दी हर एक डिश है। जलेबियां, पकौड़े, समोसे, टिक्कियां, व्याह होवे पार्टी या होण किट्टियां, स्वीट महल दी वेज या नॉन वेज आइटम्स ले डाइन इन करो या केटरिंग करवाओ। इको नंबर घुमाओ 416-679-9999 और विजिट यूनिट 9680 रेक्सडेल बुलेवार्ड टॉबिको। स्वीट महल, ट्रेडिशन ऑफ टेस्ट।
4: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਬਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਹੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਕਿੰਗ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਤਵਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 1 crack ਆ, 2 crack ਨੇ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ 'ਚ crack ਆ, ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 416-451-4561-4565-4565 416-451-4565।
5: लाओ जी चक्को फिर खुशखबरी, ब्रैम्पटन निवासियों ले खुशखबरी। हुण जदों भी तुसी कैनेडियन, इंडियन या पाकिस्तानी ग्रोसरी खरीदना चाहो तां ब्रैम्पटन विच इंडियन फ्रूट लैंड दीआं चारों लोकेशनां विचों जिथे मर्जी आ जाओ, चाहे 15 फैंड अवे ब्रैम्पटन होवे जां दूजी लोकेशन 45 डस्ट ड्राइव ब्रैम्पटन या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूट लैंड, ते हुण चौथी नवीं लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन। ਵਧੀਆ ਗਰੋਸਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਫਰੂਟਲੈਂਡ 905-456-9900।
6: जी दोस्तों, मेरे वालों यानी कि जगजीत महल वालों तुहानू सारां नू प्यार भरी सत श्री अकाल। तुसीं जुड़ चुके हो प्रोग्राम सारंग दे विच, तुहाडा ते मेरा साथ बनया रहेगा सही 3 बजे तक। अज दे इस प्रोग्राम विच गल्लां बातां होणगीआं, गीत संगीत होवेगा। जिवें तुसीं देख रहे हो अज बड़ी सोहणी दुपहर खिड़ी हुई आ, हफ्ते दा दूसरा दिन, लौंक वीकेंड तों बाद सारे लोक आपो अपने कम्मां कारां दे विच महफूज हो चुके हैगे। सो कईआं दे चेहरिआं ते मुस्कान होणीआं ते कईआं दे चेहरिआं उपर उदासी होणीआं। आपां आम तौर ते सोचदे आ कि अज दा दिन मेरे लई बड़ा ही माड़ा गा, पर याद रखो दिन हमेशा माड़ा जां चंगा नहीं हुंदा, इह समें दी करवट हुंदी आ। जे अज किसे पासे कोई तंगी परेशानी आ तां हो सकदा कुछ घंटिआं तक तुहाडे चेहरे दे उपर मुस्कान भी आ जाए ते उह तंगी आ जिहड़ी तुहाडे कोलों दूर चली जावे। सो हमेशा हसदे रहो, जिंदगी नूं इंजॉय करदे रहो, क्योंकि जिंदगी इक वार मिलदी आ, बार बार नहीं मिलदी। सो आपो अपने कम्मां विच मस्त रहो, आपो अपने कम्म नूं बड़ी दिल दी गहराई तों करदे रहो। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠੇ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।

यहां से दूर दूर यकीन की हद के पास पास दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेज या रीफाइनेंस करवाना चाहते हो तब तुसी भी अपनी गड्डी मोड़ो 1200 डेरी रोड ईस्ट यूनिट 22 मिसिसागा 416-804-2015 416-804-2015।

Beyond IOR, the number है 905-793-3937, 905-793-3937 Beyond IOR. Okay, थोड़े नाल अज गलबात करनी है एक सिचुएशन बारे, तो थोड़ा ओपीनियन बड़ी जल्द आप उस बारे लवेंगे, तो देखते हैं तुसी की कहने हो. दो बोल लाने तो फिर एक गलबात आप करनी है सरांश होना दे नाल, तो फिर थोड़े लिए वो जी डिस्कशन है आप ऑन द एयर करते हैं. सुने दो मिनट तो फिर वापस आने प्रोग्राम है पंजाबी राइट. जो गीत यार मेरा अजकल का बड़ा पसंदीदा है, मेरा ना एक फ्रेंड मैंने एक उन्हें बड़ी वधिया गल की, कहिंदा नवी जे किसी वड्डे कलाकार ने गाना गाया हुंदा ना बस मिलियनस ऑफ लोगों ने सुनना सीगा. कई बार कोई मैं नहीं कहिंदा ये मुंडा बड़ा बड़ा टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा दुल्ला नवा भी नहीं हैगा, बट कई बार कई गाने जो तुसी 13-14 कढ़दे हो ना एक टाइम ते फिर कई लोके जे रह जांदे. सो मैं सुणाउणा तुहानू गीत, तुसी बड़ा इंजॉय करोगे. एंड पैशन रूफिंग, रूफ का काम करवाना करा लो. समर है, समर खत्म हो रही है, रूफ नमी पैन वाली है, रूफ थोड़ी लीक हो रही है. पैशन रूफिंग 647-919-9494, 647-919-9413, 647-919-9413. पैशन पैशन पैशन रूफिंग. एंड दुल्ला जी आ जाओ फिर.

0: क्या बात है जी 5480 हेलो।
1: हाँ जी सर, गुड इवनिंग, की हाल है?
0: वधिया सर।
1: सर एक नंबर लाना थोड़ा, फिर तो करो, विंडोज बनांदे आगे उन्हें दी ऐड आंदी जी अपने इत्थे।
0: विंडो वाले दा नंबर लिख लो जी।
1: हाँ जी
0: 647।
1: हाँ जी
0: 926।
1: हाँ जी
0: 0047।
1: थैंक यू वेरी मच सर। एक इत्थे
0: इंस्टाग्राम पेज है मैसेज कर दिया करो जे कोई नंबर चाहिए या सानू तुसी आराम नाल फोन घुमा लिया करो तो असी बिल्कुल थोड़े लिए हाजिर है। ओके अपने ना व्यामा ते बहुत बार खाना पीना चलो वेस्ट होंदा। एक बंदा ओ किसे व्याह ते गया ते ओ ना नाल कंटेनर लै गया, कंटेनर लै गया तो उन्हें चलो जी कंटेनर दे विच खाना सीगा पाके घरे लै गया। तो बड़े लोगों ने उस चीज़ नू कितना किते क्रिटिसाइज किया कि यार तू व्याह ते आया तो तू खाना लैके जा रहा घरे कि चंगा लगता, जिन्ना खाना उत्थे खा इहदा मतलब ये थोड़ा भी तैनू किसी ने सद लिया तो तू डब्बा भर के या कंटेनर भर के घरे लैके जा। कई लोग फिर भी चलो कहिंदे यार फिर की हो गया, जे जिहदा जिहड़ी फैमिली दा विआह सी उन्होंने नहीं माइंड किया तो फिर थोनू की है, नाले खाना वेस्ट होंदा। वेस्ट होण तो वधिया कि तुसी चलो एटलीस्ट खाना जिहड़ा वो डब्बियां च पा लो नाल लै जो फिर की हो गया। सो थोड़ा की ख्याल है इंज खाना डब्बे च पा के घरे लैके जाना, डज इट लुक बैड या थोनों कोई इस चीज़ नाल कोई गलत नहीं लगता? नंबर है अपना 905-673-3337 905-673-3337 905-673-3337 अपना नंबर है 905-673-3337 कॉल कर रहे हो होल्ड ते रहो, थोड़ी कॉल ऑटोमैटिक होल्ड ते पाई जाऊगी ते वापस आके थोड़ी कॉल्स लेने हैं। नंबर है 905-673-3337 देखते हैं जे कोई थोड़े व्याह ते आके इंज करे तुसी माइंड करोगे? जे थोनू किसी ने सद्या तुसी कदे ऐ कीता नाल कंटेनर लैके भी चलो जी साढ़े अगले हफ्ते का लंच पैक हो जूगा डिनर पैक हो जूगा, थोड़ी कुछ कॉल्स मैं जरूर लेना चाहवागा। विल बी बैक।
2: This is AM 530, CHLO AM, an Evanoff communication station, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
3: The views and opinions of the guests and sponsors are solely theirs and not that of the hosts or management of Punjabi Lehra. Punjabi Lehra is not responsible for any interactions our listeners have with any businesses advertised on our shows.
4: सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो ए मौका ना गवाओ। बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने। कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने। सीमित समय ले HST दे विच खास बचत दा फायदा लो। हाईवे 401, 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते। सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ। अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMORE homes.com।